बड़ा बड़ा राजा बहादुर शाह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दरबार सजाया होया है, आके नमस्कार बहादुर।

बहादुर शाह बड़ा हैरान होया। संगत विच बैठा सोची जाता है, अगे भी कई बार सतगुरां नूं मिलिया, होर भी संगत आंदी है, पर जदों मैं मिलदा हां ते किड्डे प्यार विच भिज के सतगुरु आखदे ने धन गुरु रामदास, भी इस गल दे पिछे केड़ा राज छुपिया है। बैठा सोची जाता है, सतगुरु आखन लगे क्यों बई बहादुर शाह केड़ियां सोचां।

पर मैनू एक गल दसो, इस गल दे नाल मेरा की संबंध? ये गल दसो। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्यार दे विच भिद के नेत्र बंद करके आखन लगे, बहादुर शाह ओ बुढ़ा बाबा कोई होर नहीं, वो तू ही हुई सी जो एक एक प्रसादे नूं तरसदा रहिंदा सी, तू ही हुई सी। अज जन्म लैके सारी दुनिया ते राजा राज करदा है, किड्डे किड्डे नौकर चाकर तेरे अगे हाथ बन्नी खलोते ने, आ देख लै गुरु रामदास दियां रहमतां तेरे कोल अज तक नहीं मुकियां, अज तक नहीं मुकियां, पता नहीं किन्ना चिर तू खानियां ने, किन्ना होर सुख भोगना है, कौन जाने गुण तेरे चरणा ते डिग पे।

अश्वपति जिसके अंतर राज अभिमान सो नर्क पाति होवत सो आन जो जाने मैं जो वनवंत सो होवत विष्टा का जंत आप उसको कर्मवंत कहा वह जन्म मरे वो जोन परमा वह तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्ति आगे सुख पावे धनमंता हुए कर कर वावे तृण समान कट संग न जावे बोल स्कुरमान के ऊपर करे आस फल भी तरता का हुए विनाश सबते आप जाने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरु प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए प्रवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे आनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतारे अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै हर दर गए को कैसे गवै आप उसको जो भला कहावे ते से भलाई निकनाया वै सर्व की रेन जा का मन होए कौन नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ये जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म जाए दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे साहस खटे लक उठता वै तृप्त न आवै माया पाछ पावे अनक भोग बिखिया के करे न तृप्ता वै खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज सुपन मनोरथ पृथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ बेचार जैसी दृश्य करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किच कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ के संग बूझे देखे करे बेक आपे अनेक मरना बिन से आवे न जाए नानक सद ही रहे समाये आप उपदेश समझे आपे रचे सबके साथ आप कीनो अपन बिस्तार सब कछ उसका वो करने हार उसते पिन कहो किच होए थांत नंतरे कैसोए अपने चलते आप करने हार कौत करे रंग आप हर मन में आप मने अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी

अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मानु की तू प्रीति आग तिस्ते परे नाई किच कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना या पे दान गहर गंभीर गहिर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध तेरे की चलने पाओ नानक मने अनराव मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जा कै सर्व थोक सुनिए करता कह राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपिसर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुर का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सकल देव हरे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सकल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम त्या वैसे ते गुण मैं जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊच नीच जिसके स्थान जैसा जना वै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेक रहा एक रंग नाना विदगीनो बस्तार प्रभे बनासी एक अंकार नाना चलत करे खिनमाए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमते आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सकले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाए समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिस है बुझाए तिस है सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जा कह रे दे प्रवेश सत निरत बुझा जे कोय नाम जपता की गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ करने हारे अवल न बूझ करत बीचारे करते कीमित न जाने की है नानक ज्योतिष भावै सो वर्ती है विस्मन विस्म भय विस्माद जिन बूझया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे होय दाते दुखा तनुहारे जा कै संगत रह संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन कै संग एक लिव लागी

एक अराध पराशित गए मानता अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल से लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मांगै नाम प्रभ सार प्रभ के दिष्ट महासुख होए हर रस पावै विरला कोए जिन चाख्या से जंत्र पताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो भर परे प्रेम रस रंग उपजै चाहो साध कै संग परे शन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग पड़पागी जपया प्रभ सोए नानक ना मरते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक किनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इश पुनी सरदा सब पूरी रव रहे आ सद संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै

पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाण कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते

काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट की पट पट की जानै, जा बुद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही तेरे तिन रालम, जानत वेद भेद अर आलम,

ताको कृपा हनि अनुमानत महा मूढ़ कछु भेद न जानत महान देव को कहत सदा सेव निरंकार।

कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनिक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वस कै न कोई।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता। किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुने गुंग जो याही, सुरस न पावई। सुने मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट, न तिन नर की रह। हो जो या की एक बार, चौपई को कह। चौपई संबत सत्रह है, सहस पणिजय। अर्ध सहस फुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह, हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर।

जब तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कारण न की जय जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पहन तरी जय सिर दी जय कारण न की जय गगन दमामा बाजियो परयो निसा नहीं कहो खेत जो मांडियो सूरमा आव जू जन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा कट मर कबहु नान छड़े खेत

सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वस है मिरही अरे, सांग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुख एही।

ऐसी मरनी जो मरे बहुड़ न मरना हो, सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी नूर अर सौ गुर सौ चटी है, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी।

पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आण लो पवन चवरो खरे सगल बनराय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ सहसव नैन नन नैन है तो हे काओ सहस मूर्त नन एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन

0: को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है।
1: वाहेगुरु जी, निर्मल नाम सुधा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगट दिन आगर, गहर गभीर अथा अत बड, सोपर सदा सब बित रतनागर। संत मराल करे कतुहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे को, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। संत मराल करे कतुहल, तिन ना जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर

0: नामे समस्ति स्वरूपे
1: परमाते समस्ति विभूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो
0: जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अभोगी अभुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वरं परम युक्ते।

0: प्रकाश है कि अमित सुभाष है,
1: अजब स्वरूप है कि हम तो प्रभूत है,
0: अमित पसा है कि आत्म प्रभा है,
1: चलन रंग है कि हम तो अंग है,
0: हर बार चंद प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगान मुदाम।

0: कलकंड से
1: पाते पर है कृणा कर है
0: जपा जपे तपा तप
1: अक्ता कृत अमृत अमृत
0: अमृत अमृत कृणा कृत
1: अक्ता कृत तन्मित्र
0: परमेश्वर है
1: अक्ता कृत।

0: समस्तुल्पणामे समस्तुल्पणासे
1: अकंजुलानामे समस्तुल्निवासे
0: निर्गामं विभूते समस्तुल्स्वरूपे
1: उकर्मं प्रणासी सुकर्मं प्रभूते
0: सदा सच्चिदानंद सत्रंगपणासी
1: करिमलकुनिंदा समस्तुल्निवासी
0: अजायब विभूते गजायब गनीमे
1: हरियं करियं करिमुल रहीम।

0: फादे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास लवरी है।
1: जो सदा हमारे पच्छा श्रीय सुजो करो रच्छा,
0: राख लय मय राखन हारे, साहिब संत साहिब प्यारे।
1: बंदोष्टन के हंता तुमो पुरी चतुर्दश कंता,
0: काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा,
1: काल पाए कर विषम प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।
0: जवन काल जोगी शिव की हो, वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो,
1: जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।
0: जवन काल सब जगत बनायो, देव दे जचन उपजायो,
1: आदंते के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा।
0: नमस्कार तिसी को मारी, सकल प्रजाजन आप सवारी,
1: सिपकन को सब गुण सुख दियो, संतरन को पल मोहबत कियो।
0: कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पी पछानत,
1: जीते कुंचर अस्तुला, सब पर कृपा दृष्ट फूला।
0: संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी,
1: एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने।
0: जब कर करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा,
1: जब कर कर तुम कबू, तुम में मिल दे तर सबो।
0: जेते बदन से सब टारे, आप अपनी बुझ चारे,
2: तुम सभी तेरे निरालम, जानत भेद भेद अरालम।

0: सा न जाए पसारा, कै विध सजा प्रथम संसारा।
1: एकै रूप अनूप स्वरूप पारंग पयो राख गई पूपा।
0: अंडजे रसे तजकीनी उत्पुज खान बहो रचलीनी।
1: को फूल राजा हुए बैठा को सिमट पयो संकिर गैठा।
0: सगरी सिर दिखाए चंबवा जुगा स्वरूप से अंबवा।
1: अब रचा मेरी तुम करो सिखो बाण सिख संग करो।
0: दुष्ट से उठवा तुट पाता सकल मलेच करो रंकाता।
1: ये सच तब सरनी परे तिनके दुष्ट के तुम अमरे।
0: पुरख जवन पग परे जहारे तिनके तुम संकट सब तारे।
1: जो कल को एक बार ते आइए ताके काल निकट नहीं आए है।
0: रचा होए काए सब काला दुष्ट रिश्चर तत्काला।
1: कृपा दिस्तन जान हरो ताके ताप तनक मोहरे।
0: रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चाचे सके न कोई।
1: एक बार जिन तुम्हें सवारा काल फास देता उबारा।
0: जिन्नर

0: जगमाता ग्रंथ करा पूरन सुव्रता
1: सगल दे को हरता दुष्ट दोखियन को जय करता
0: श्री सुचा पे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला
1: मन बाचत फल पावे सोई दुखना तिसे बे आपत कोई
0: अरे सुने गुंग जो यास रसना पावे सुने मूड चित लाए चितावे
1: दू गर्द को निकटना तिन्नर के रहे हो जो या की एक बार चौपई को कहे
0: चौपई संबत सत्रह सास पनी जयाद सास पुन तीन कही
1: जय आदर सुधी असमी रविवार आती।

0: Sant ekum kashtat për prasad, nan pia minima e satku me paja.
1: Satruta paja, se siti manujia vadaya.
0: Vazim barva paria, sabdu ga vinaya.
1: Sabdu tu ga vu harikira manjini vasaya.
0: Nanak nandhuva satku me paya.
1: E manu merya tu sadaro harmale.
0: नानक सचे साहिब क्या नही कर तेरे
2: साचा नाम मेरा आधार
0: साच नाम आधार में जिन भुखा सब गुवाई सदा भगवान की तो गुरुति हो जिसते विद्या
2: या नानक सुनो संतो शब्द रूपे आरो साचा नाम मेरा आधारो
0: वाजे पंच सब गर सपागे कर सपागे सब वाजे गला जिसका तारिया
2: पांच दूत वास कीते काल कंटक मारिया
0: करम पाए दुजन सो नाम हर के लागे
2: कह नानक तह सुख होवा।

0: मुक्त पाए लाग चरणी सदगुरु सबद सुनाए।
1: नानक विचार देखो बिन सदगुरु मुक्त ना पाए।
0: आवो सिख सदगुरु के प्यारे ओ गावो सच्ची बाणी
1: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी
0: जिनको नदर करम होवे।

0: जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पैर दा जियो पिंड सब, तुम मात पिता हम बारिक, कोई न जाने तुमरा

चक्र चेहन अर बरन जात अर पातन हैन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कहन सकत केहे अचाल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहो साहान गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत सो कहो तल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जनम मरण होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात साह सिर साहां दे साह जिस पास बहिठिया सोही है सब ना दावी साह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच सुमा वैरिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैसू नाय ने अपराच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर चली चंद्रा विवकान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग

कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किश है सो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैं नाहीं कछ हो नहीं, कछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा, अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा, सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। हो वै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सचे पात साह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दे साहो, जिस पास बैठिया सोही है, सब नांदा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला पहला। सुन मां छिंद्रा नानक बोले, वसगत